क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको खुदा ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि खुदा के बारे में झगड़ते हैं, ना इल्म रखते हैं और ना हिदायत और ना किताब रोशन।

0: این صدای لاهور است، این صدای یوسیپی است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان یوسیپی.
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
3: एक नई पहचान,
2: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
3: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया।
2: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए,
2: सुनते रहिए।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
3: अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं FM 92.6 मैं हूं मरियम इरशाद आज एडमिशन कैंपेन के साथ और मेरे साथ हैं डॉक्टर आतिफ अशरफ जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के साथ लिंक्ड हैं अस्सलाम वालेकुम सर
4: वालेकुम अस्सलाम
3: सर सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो इंटर के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कैसे FMMC में एडमिशन ले सकते हैं स्पेशली BS में
4: देखिए जी जो इंटर करके आते हैं स्टूडेंट उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम उन्हें BS की डिग्री ऑफर कर रहे हैं 4 साल डिग्री है ये BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन और इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 45% मार्क्स जरूरी हैं लेने उसके बाद एक यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है उसकी असेसमेंट होती है देन मेरिट लिस्ट लगती है देन एडमिशन आपको ऑफर किया जाता है तो BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में ये 4 साल के प्रोग्राम में आप पहले 5 सेमेस्टर तक जनरल कोर्सेज प्लस मेजर कोर्सेज प्लस इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ते हैं इसमें कुछ कोर्सेज HEC के कंपलसरी हैं कुछ कोर्सेज मेजर इसमें हमने फंडामेंटल बेस के इसमें ऑफर किए हुए हैं उसके बाद आफ्टर 5th सेमेस्टर हम 2 स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं स्पेशलाइजेशन की एक स्ट्रीम है पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया और एक स्ट्रीम है फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया जो स्टूडेंट्स आफ्टर 5 सेमेस्टर्स पढ़ने के बाद जब वो उनका एक जहन बन जाता है कि उन्होंने कहाँ आगे अपने करियर को लेके जाना है अगर इफ दे वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और अगर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना है न्यूज में काम करना है जर्नलिज्म में काम करना है प्रोडक्शन साइड पे जाना है देन द चॉइस इज विद फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया स्पेशलाइजेशन और अगर उन्होंने दूसरी तरफ जाना लाइक अगर उन्होंने PRO बनना है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करना है कंपेन डिजाइन करनी है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उसकी प्रमोशन करनी है देन वी हैव द स्ट्रीम ऑफ PR एंड एडवर्टाइजिंग तो ये दोनों जो स्ट्रीम्स हैं ये फुली इक्विप करती है स्टूडेंट्स को कि वो BS करने के बाद अपनी जो करियर पाथवे को चूज कर सके और ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो पाथवे है उसको भी ऑप्ट कर सके तो दोनों स्ट्रीम्स के अंदर हम फुली तैयार करते हैं स्टूडेंट्स
3: और सर यूजुअली ये होता है कि जब बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ये चीज रिटेलिएट की जाती है कि क्या करोगे BS फिल्म टीवी और डिजिटल मीडिया पढ़ के या क्या करोगे BS मास कम्युनिकेशन पढ़ के तो हम ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जिससे वो अपनी आप को और अपने कैरियर को मजीद अच्छे से पॉलिश कर सके
4: देखिए जो टेक्नोलॉजी है ना ये दिन ब दिन चेंज हो रही है और अगर हम खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ न्यू डिसिप्लिन के साथ न्यू टूल्स और टेक्निक्स के साथ हम पीछे रह जाएंगे हमारी FMMC में कोशिश होती है कि हम अपना कुरिकुलम कीप ऑन रिवाइज करते रहते हैं एज पर नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एज पर द चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप तो उसमें हमने अभी भी जो नया रोड मैप दिया है अभी जो फॉल में जो हम एडमिशन कर रहे हैं इसमें हमने अलाइन किए अपने कोर्सेज AI के साथ डिजिटल टूल्स के साथ और एडवांस जो फिल्म मेकिंग के जो आजकल जो ट्रेंडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने तमाम कोर्स आउटलाइन के अंदर तो इस तरह हमारे जो रिसोर्स हैं वो रिसोर्सेज हमारे इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के लोग यहाँ पढ़ाते हैं यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं यहाँ पे हम बाहर से लोगों को इन्वाइट करते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में PR के एक्सपर्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट्स हैं फिल्म के एक्सपर्ट्स हैं टीवी इंडस्ट्री से लोग आते हैं वो आके यहाँ पे बच्चों को अपना लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो इस तरह से उनकी ग्रूमिंग होती है ताकि यहाँ पे ग्रूमिंग के साथ साथ वो स्किल सीखते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे है हमारे पास लैब है हमारे पास टीवी प्रोडक्शन हाउस है हमारे पास 24/7 रेडियो स्टेशन है जहाँ पे बच्चे एज अ लैब ने यूज करते हैं और यहीं पे ही हमारे UCP के अंदर ही क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं जैसे मीडिया क्लब है ड्रामेटिक्स क्लब है यहाँ पे बच्चे कैपेसिटी बिल्ड करते हैं थ्रू नेटवर्किंग थ्रू ट्रेनिंग्स थ्रू वर्कशॉप्स फिर वहीं से बच्चे मोस्ट ऑफ देम ड्यूरिंग देयर जर्नी इन देयर BS 3rd या 4th सेमेस्टर से वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं या अपना काम स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह उनकी डिग्री के साथ साथ उनका जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो भी बढ़ती रहती है
3: तो सर हम लोग प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल दोनों तरह से उनको रेडी कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्किल्स भी दे रहे हैं थ्रेटिकल भी सिखा रहे हैं तो हमारे जो एल्यूमनाई हैं FMMC के वो क्या डिफरेंट जगहों पे अच्छे से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपने कैरियर में उन्होंने उसी तरह से अचीवमेंट्स ली हैं जिस तरह से वो यहाँ डिजायर और गोल लेकर आए थे
4: हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है एल्यूमनाई का हमने अपने तमाम लुमिनाइज को लूप में रखा हुआ है और वो लुमिनाइज हमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी कहीं मार्केट में कोई पोजीशन आती है दे कनेक्ट विद अस एंड यहां से फिर जो हमारा जो एक स्टूडेंट जो तैयार हो रहा है उसके साथ रابطे हम करवा देते हैं। इस तरह हम अलुमनाई नेटवर्क की मीटिंग्स भी करवाते हैं और यहाँ पे उनको अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो करंटली एनरोल्ड हैं उनको चैनलाइज करते हैं कि उनके साथ अटैच हों और वहीं से भी जो उनके डिजायर्ड जो उनकी गोल्स हैं उनको अचीव कर सके।
3: और सर हमारे स्टूडेंट्स मीडिया आउटलेट्स में काम कर रहे हैं एज इन प्रोफेशनल्स।
4: मेरे ख्याल में लाहौर में सबसे ज्यादा जो इंडक्शन है मीडिया स्टूडेंट्स की वो यूसीबी से ही है बिकॉज लाहौर में जितने भी मेन चैनल्स हैं जितने भी बड़े बड़े चैनल्स के नाम ले सिवाय एक दो चैनल्स के जो कराची बेस्ड हैं अब तकरीबन तमाम इंडस्ट्री लाहौर में शिफ्ट हो चुकी है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जो काम कर रहे हैं एज इंटर्न या एज अ इनिशियल लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं जर्नलिस्ट हैं रिपोर्टर्स हैं डिजिटल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द आर फ्रॉम यूसीबी। इवन के एंकर्स जो हमारे हैं काफी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं रिपोर्टर के तौर पे कर रहे हैं और डेस्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं।
3: दैट्स रियली ग्रेट। और सर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो अगर एमफिल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम यूसीबी में एफएमएमसी में एमएस कौन सी स्पेशलाइजेशंस में करवा रहे हैं और इसका क्या क्राइटेरिया?
4: एमएस या एमफिल ये 18 साल डिग्री है। इसमें हम तीन मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। एक एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन ये रिसर्च ट्रैक है क्योंकि जिन्होंने फर्दर पीएचडी करनी है उनके लिए ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है कि यहाँ पे वो फुल फ्लेज रिसर्च और थ्योरी सीखते हैं देन अपने करियर को पीएचडी लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। इसके अलावा दो और प्रोग्राम्स हैं इनमें एक एमएस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस है और एक एमएस फिल्म एंड डिजिटल मीडिया है। ये दोनों एमएस करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं लेकिन इनमें रिसर्च का पोर्शन कम है लेकिन इसमें जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो ज्यादा है। लाइक जो प्रोफेशनल जाना चाह रहे हैं पीआर एडवर्टाइजिंग के अंदर या फिल्म मेकिंग के अंदर या टीवी के अंदर या डिजिटल मीडिया के अंदर वो ये एमएस पीआर या एमएस फिल्म एंड डिजिटल मीडिया को ऑप्ट करते हैं। और ये हम तकरीबन एज पर एचईसी पॉलिसी हम 1.5 से 2 साल में डिग्री करवा देते हैं और इसमें हम पहला जो साल है वो कोर्स वर्क का है उसके बाद एक प्रोजेक्ट या थीसिस होता है। अच्छा इसका जो आपने पूछा क्राइटेरिया क्या है तो इससे पहले मैं बात करूंगा स्कॉलरशिप्स की। तो जो स्कॉलरशिप है वो हम ऑफर कर रहे हैं जो अक्रॉस द बोर्ड जो तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको और जो टीचर्स हैं अगर वो एमएस में आना चाह रहे हैं तो हमने फ्लैट 50% डिस्काउंट या स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। हमारी टोटल फीस का 50% उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यूसीबी लुमनाइज हैं उनके लिए 3.8 सीजीपी के ऊपर 75% डिस्काउंट है और 3.5 के ऊपर 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा जो अदर देन जो हमारे यूसीबी के जो ग्रेजुएट्स जो आना चाह रहे हैं एमएस में एडमिशन लेने के लिए उनके लिए 3.8 सीजीपी के ऊपर 75% डिस्काउंट है और 3.6 के ऊपर उन्हें हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो ये डिस्काउंट इसलिए देने के हम एनकरेज कर रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आए और यहाँ के प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में रह के वो तमाम स्किल्स सीखे और अपने प्रोफेशनल लाइफ को मजीद इम्प्रूव करें।
3: सर जैसे भी आपने बात की कि हम एमएस में एडवर्टाइजिंग इन पीआर एमएस फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया और एमफिल रिसर्च ऑफर कर रहे हैं तो हमारी जो फैकल्टी है वो किस तरह से बाकी फैकल्टीज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को हम वेल इक्विप कर रहे हैं कि जब वो मार्केट में जाएं तो वो अपने आप को अच्छे से वहां अपनी पहचान बना सके उनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग हो।
4: यूसीबी की फैकल्टी ऑफ मीडिया ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में सबसे बड़ी फैकल्टी हमारी फैकल्टी है। सबसे बड़ी से मुराद इनकी जो आउटपुट है वो बहुत बड़ी है। मसलन हम अभी तक 40 पीएचडीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं पूरी फैकल्टी जो कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। हमारा रिसर्च ट्रैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास जो पब्लिकेशन के हवाले से हम एक एचजीसी रिकॉग्नाइज जर्नल्स हमारा निकलता है। इसके अलावा हमारी जो रिसर्च है वो जो हमारा क्राइटेरिया रिसर्च का वो एचजीसी एक स्टेप ऊपर है। लेकिन अगर आपने पीएचडी करनी है तो एज पर एचईसी स्टैंडर्ड आपको वाई कैटेगरी के जर्नल्स की जरूरत होती है पब्लिकेशन के लिए। हम यहाँ पे उसे एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। हम पीएचडी की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक्स कैटेगरी कम से कम एक्स कैटेगरी या डब्ल्यू कैटेगरी के पेपर्स को एक्सेप्ट करते हैं देन हम पीएचडी की डिग्री अवार्ड करते हैं। दूसरा एक तो हमारी होगी रिसर्च साइड। हमारे पास 11 पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि इस सफर को आगे लेके चल रहे हैं और बाकी जो हमारी दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जैसे आप एमफिल की बात करें एमएस फिल्म और एमएस एडवर्टाइजिंग की जो फील्ड है उसमें हमारा जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो मैचलेस है। मसलन हमारे यहाँ जो हमारा रेडियो स्टेशन है ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी जो 24/7 काम करता है। दूसरा हमारे पास एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मीडिया हाउस के अंदर न्यूज प्रोडक्शन होती है एक स्टूडियो होता है उसमें क्रोमा होता है मल्टी कैमरा प्रोडक्शन सेटअप पूरा लगा होता है। उसके अंदर आप एक प्रॉम्प्टर होता है सीलिंग लाइट्स होती हैं उसकी टॉक शो के सेट्स होते हैं हार्ड सेट्स होते हैं वो तमाम चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर टॉक शोज की, न्यूज की और इवन के प्रोडक्ट फोटोग्राफी की प्रैक्टिस भी करते हैं। और हमारी जो एक और स्ट्रेंथ हुई है कि हमने मार्केट से हम लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और यहाँ आके वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स करवाते हैं। बड़े बड़े नाम है, हमारा मीडिया सिंपोजियम हर साल होता है, हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम दो करवा चुके हैं, इसके अलावा हम MOU साइन कर चुके हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ, न्यूज चैनल्स के साथ, एड एजेंसीज के साथ, डिफरेंट और सेक्टर्स के साथ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ सीख के असल जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उसका थोड़ा टेस्ट ले सके। इसके अलावा हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप तो करवाते ही करवाते हैं, हम उनको भी इंडस्ट्री में भिजवाते हैं ताकि वहां जाके इंडस्ट्री का टेस्ट लेके आए और यहाँ आके अपनी जो लर्निंग है उसको यहाँ पे अकोमोडेट करें अपनी टीचिंग के अंदर। तो इस तरह हमारी जो दोनों स्ट्रीम्स हैं, रिसर्च स्ट्रीम्स हो या प्रोफेशनल स्ट्रीम हो, दोनों के जो एक्सीलेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, एनवायरमेंट मौजूद है, लैब्स मौजूद हैं, इक्विपमेंट मौजूद है और हमारा आउटपुट जो है वो बाकी एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज से हमारा आउटपुट काफी बेहतर है। दैट्स व्हाई आई कैन से कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, इज अ बेस्ट चॉइस फॉर ऑल द पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु वांट टू डू देयर BS और MS और PhD ओवर हियर, एंड हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं।
3: और सर अगर उन्होंने अप्लाई करना हो तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
4: हमारा बहुत इजी ऑनलाइन पोर्टल है UCB का, वहाँ पे जाएं, एडमिशंस के टैब के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे पोर्टल पे अपना डाटा शेयर करें और उसके बाद आपका वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाता है।
3: और सर अगर इन केस ऑफ एनी क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को BS में या MPhil में एडमिशन लेने से पहले कोई भी किसी किस्म की क्वेरी है तो वो किससे कॉन्टेक्ट करके अपने सवालात की या मुश्किल का या जो भी वो सोच रहा है, वो जो करना चाह रहा है, वो क्लियर नहीं है कि वो कहाँ एडमिशन ले, कैसे ले, क्या कर सकता है, वो कैसे किससे पूछ सकता है?
4: सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो यहाँ पे विजिट कर लें UCP में, एडमिशन ऑफिस में तमाम लोग बैठे हुए हैं जो उनको गाइड करने के लिए। फैकल्टी विजिट कर सकते हैं, मुतलका फैकल्टी वहाँ पे जाएं। इसके अलावा फोन भी अवेलेबल है, एक नंबर दिया गया है, शेयर्ड नंबर है वो वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे फोन कॉल करके भी वो गाइडेंस ले सकते हैं।
3: और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी हमसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है,
4: मीडिया के थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, वहाँ से भी आपको क्वेरीज का आंसर मिल सकता है। लेकिन बेहतर है कि मैं कहूंगा कि तमाम जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट देखें, यहाँ पे सिर्फ एकेडमिया नहीं है, यहाँ पे रिसर्च भी है, यहाँ लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज भी है, लैब्स भी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे जिमनेजियम भी है, यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज हैं, कैफेज हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को लगता है कि या वो यूनिवर्सिटी के कल्चर के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन नहीं मिलती बल्कि एक्स्ट्रा कुलिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स का ओवरऑल एक उनको टेस्ट मिलता है। यहाँ पे हमारी UCP मुसलसल पिछले कई साल से HEC का स्पोर्ट्स कंपटीशन विन करती आ रही है, तो हमारा एक नाम है स्पोर्ट्स के अंदर भी। तो इसलिए जब भी आप यूनिवर्सिटी UCB का लिखेंगे गूगल के ऊपर इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, तो आपको HEC में सबसे टॉप पे UCB नजर आएगी।
3: अभी जैसे आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
4: एक कैटेगरी है टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, उसमें अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, आपके पास कोई टैलेंट है, तो अगर आप समझते हैं कि आप उस टैलेंट की बेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाह रहे हैं, तो UCB आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन दे देगी। लेकिन आपने अपना टैलेंट एक कमेटी के सामने प्रूफ करना होगा, कमेटी के थ्रू गुजर के फिर आप उसमें

0: एक बच्चा यस एक स्कॉलरशिप लेके आया है, उसका CGPA लेट्स सपोज 3.8 था, उसको 75% स्कॉलरशिप मिल गया फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद अगर वो अपनी उस प्रोग्रेस को मेंटेन नहीं कर पाता और बार बार लापरवाही करता है, उस तरह की क्वालिटी नहीं अपनी शो करता एकेडेमिया में, देन ऑटोमेटिकली फिर उसके ऊपर उसका असर उसके ऊपर आएगा। तो इसलिए जो स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप मेंटेन करना पड़ता है अपना, ताकि यूनिवर्सिटी समझे कि ये बंदा काबिल है और ये बंदा इस लाइक है, इसको तमाम ईयर्स जो आने वाले साल हैं उनमें वो उन्हें वही स्कॉलरशिप उनका इंटैक्ट है। और हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो टैलेंटेड बच्चा होता है, जो कि एक काबिल एक अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो वो उसी उन्हीं मार्क्स को कंसिस्टेंटली फिर उसको फॉलो भी करता है। तो बड़े कम केसेस ऐसे हैं जिनमें स्कॉलरशिप उसका खत्म हुआ हो, क्योंकि वो बच्चे की अपनी उसमें कोताहियां होती हैं जिसका यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकती।
1: और ये बिल्कुल एक जर्नल से मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ना हम पे इम्पोज किया जाता है, ना हमें कहा जाता है, ना ही हम स्टूडेंट्स की जानबूझ के स्कॉलरशिप्स को खत्म करते हैं, बल्कि ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन मैंने तो आज तक इतने टाइम में नहीं देखा।
0: ऐसा बिल्कुल मिथ है, ये कुछ जानबूझ के कोई खत्म नहीं करता। अगर कोई ऐसी अगर लेट्स से ना एफर्ट्स किया, अगर किसी बच्चे ने वो सारा सेमेस्टर क्लास में नहीं आया और उसने वर्स्ट परफॉर्म किया है, ना कोई असाइनमेंट जमा करवाई, ना क्विज जमा करवाया, ना पेपर में वर्स्ट परफॉर्म किया है, तो आप उसे ए ग्रेड तो नहीं दे सकते ना। हमने क्वालिटी श्योर भी करनी है, क्योंकि वी आर बाउंड, एथिकली हम बाउंड है, हम क्वालिटी श्योर करें। अगर वहाँ पे लेट्स सपोज ने सी या डी ग्रेड लिया है, तो उसका स्कॉलरशिप कैसे मेंटेन रह सकता है? तो डेफिनेटली अगर वो मेहनत करेगा तो फिर उसको स्कॉलरशिप मेंटेन हम करेंगे, अदरवाइज इस तरह तो फिर दुनिया का हर जो बच्चा है वो अगर लेट्स सपोज इंटर में अच्छे नंबर लेके आ गया है और पहले सेमेस्टर में फीस अवेल कर ली है स्कॉलरशिप वाली, उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया है, तो क्या हम उसको डिग्री दे देंगे?
1: क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपका खुद का एफर्ट पुट करना बहुत मैटर करता है। सर, इसी के साथ में लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स इंटर करके पास हुए और वो भी बहुत कंफ्यूज हैं कि वो एडमिशन लें या वो वेट करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कि वहां पे उनकी लिस्ट में नाम आएगा, या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, वो क्या करें, वो कौन से करियर को चूज करें इन फ्यूचर, वो किस तरह से कौन सी डिग्री को ऑप्ट करें, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं बीएस में, बहुत सारी ऑप्शंस अब उनके सामने हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी और वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं?
0: देखिए, ऑप्शन बहुत सारी हैं इंटर के बाद, और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उस तरह से करियर काउंसलिंग नहीं है स्टूडेंट्स की, दे आर कंफ्यूज्ड कि हम कहाँ पे जाएं। तो उसमें मैं जो सजेस्ट करता हूँ अक्सर बच्चों को कि आप हमेशा सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप किस चीज में कंफर्टेबल फील करते हैं। हर वो काम जो आपको करने में मजा आता है तो आप उस काम को जरूर करें। अगर आपको मैथ नहीं पसंद, अगर आपके मैथ पल्ले नहीं पड़ता, तो आप मैथमेटिक्स में ना जाएं, आप कंप्यूटर साइंसेज में ना जाएं, ऐसी फील्ड्स में ना जाएं जहां पे मैथ या स्टैट इन्वॉल्व है, बिकॉज आपके शायद आपका जेहन उस तरफ से उस तरह अलाइन नहीं। अल्लाह ताला हर किसी को ना अपनी खास कैपेसिटी दी है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथ में, कुछ लोग मैथ नहीं कर सकते, कर पाते। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप वहां पे जाएं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपको ड्राइव करता है। और जब आप एक फील्ड में आ गए हैं और उसमें फिर आप परफेक्शन के लेवल तक जाएं, लाइक फिर उसको छोड़े ना, फिर कंसिस्टेंट रहें, तो ये बड़ा ये खुद को समझना, खुद को रीड करना, खुद को पढ़ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरी नजर में। वी डोंट नो कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हमें खुद को स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे तमाम बच्चे जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, दे नीड टू स्टडी देमसेल्व्स, अपने अंदर झांक के देखें, खुद से पूछें कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सोशल साइंसेस में, आर्ट्स में, आपका जेन कहां पे ज्यादा चलता है। तो फिर अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलें, अपने स्किल्स के ऊपर खेलें, तो अपना एक पाथ चूज करें, किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लें, उसके बाद कंसिस्टेंट होकर उसको फिर आप आगे लेके चलें, इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते निकले।
1: और सर, क्या उनको वेट करना चाहिए एडमिशन लिस्ट के लिए, जो वेट कर रहे होते हैं कि अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की लिस्ट लग जाएगी, अब हम एडमिशन लें या ना लें? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो यूजुअली बच्चे हमसे कंसल्ट कर रहे होते हैं, और यही कह रहे होते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या उस यूनिवर्सिटी का वेट करूँ, या मैं यहाँ प्राइवेट में ले लूँ, पता नहीं प्राइवेट में मेरी स्कॉलरशिप ना खत्म हो जाए, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगा।
0: देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, सिर्फ उसका नाम ना देखें, उसकी प्रोग्रेस देखें, उसका आउटपुट देखें। यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां आपको नजर आती हैं, लेकिन अंदर से वो उस तरह का वो माहौल नहीं है, उस तरह के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जो कि आप अज्यूम कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, मेरे ख्याल में आपने जहाँ भी आपकी जो आइडियल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जरूर जाएं, वहाँ जाकर वहाँ का सेटअप जरूर देखें, जाके उनकी फैकल्टी से मिलें, उनका सेटअप देखें, और देखें क्या यहाँ पे आपको अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की लिबर्टी है कि नहीं है, यहाँ का माहौल घुटनदादा तो नहीं है, तो किस हद तक आप वहाँ पे खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। हाँ, एक प्लस पॉइंट फीस का होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, तो वहाँ पे फीस कम होती है, दैट्स व्हाई लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आप लर्निंग लैंडस्केप की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत सारे केसेस रहते हैं कि बच्चों को डिग्री तो मिल जाती है, बट उनमें वो लर्निंग नहीं होती जो कि आजकल की नीड के मुताबिक रिक्वायर्ड होती है। तो मैं नहीं कहता कि आप वहाँ पे एडमिशन लाने, वहाँ पे अच्छी टीचर्स होंगे, फैसिलिटीज भी होंगी, लेकिन खुद विजिट करें, सीइंग इज बिलीविंग, वहाँ का विजिट भी करें, बाकी जो भी आपकी नजर में उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड

0: यूनिवर्सिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ का विजिट करें, फिर आप खुद एक मार्केट एनालिसिस करें।
1: और सर मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगी आपकी बात से कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को जरूर विजिट करें, और बुरी नहीं है, हम नहीं कह रहे किसी भी यूनिवर्सिटी को हाईलाइट करके, लेकिन जिस तरह से हमारी फैकल्टी में स्टूडेंट्स को इक्विप किया जा रहा है, जिस तरह से उन पर मेहनत की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, दैट डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड। मैंने देखा है कि हमारी फैकल्टी जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स पे काम कर रही है, वैसे बाकी किसी सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उस तरह से काम नहीं हो रहा। सर मुझे एक और चीज पूछनी है, आपकी बात से करते करते एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि समटाइम्स हमने देखा है कि हर साल ना एक सर्टेन डिग्री की तरफ लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, जैसे एक ईयर में बीबीए का बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई, फिर बीएस आईटी को बहुत कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया, फिर बीएस मीडिया के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, देन अभी मैं देखती हूँ तो बीएस एआई का कोई कोर्सेज है, उसके साथ स्टूडेंट्स करवाना चाह रहे हैं अपने आप को लिंक एंड अफिलियट। तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो हर साल ये ट्रेंड चेंज होता है ग्रेजुएशन के लिए कि हम एक सर्टेन तरह की डिग्री कर लें, क्या इस ट्रेंड के साथ खुद को लेके एडजस्ट कर लेना चाहिए, या जो आपका करियर जो आप सोचते आए हैं, जो आप प्लान करते रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि आई एम द अचीवेबल पर्सन या आई कैन टोटली अचीव दिस थिंग, उसको लेके साथ चलना चाहिए?
0: ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कभी भी आप फ्लो के साथ ना खुद को बहाएं। अगर एक फ्लो एक तरफ जा रहा है, दुनिया सारी उसमें बह रही है, तो आपने अपना रास्ता निकालना है। मसलन अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे बहुत सारे केसेस हम हर साल देखते हैं, जो ट्रांसफर केस आते हैं हमारे पास फैकल्टी ऑफ मीडिया में, ट्रांसफर केस मोस्टली जो आ रहे होते हैं वो एडवांस लेवल के फैकल्टी से आ रहे होते हैं, जिस तरह आईटी की फैकल्टी है, जिस तरह बिजनेस है, या तो उनमें जब हमने एनालिसिस करते हैं तो पूछते हैं बेटा आप क्यों ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि सर हमें मैथ समझ नहीं आता, वहां पे हमें मैथ पढ़ना पड़ रहा है, हमें कोडिंग करनी पड़ रही है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हम अबू के कहने पे आ तो गए हैं किसी भी एडवांस फील्ड में, तो लाइक आईटी के किसी फील्ड में, लेकिन वो चीज हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है। हमारा दिमाग चलता है ग्राफिक डिजाइन में, हमारा दिमाग चलता है कैमरे में, हमारा दिमाग चलता है राइटिंग में, हम एक आर्टिस्टिक वे में आना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये फील्ड बेहतर, इसलिए हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो आपने एक बार एडमिशन लेने के बाद असेस की, वो चीज पहले असेस करें। आप लेट्स सपोज अगर आपको किसी ने कहा कि ये फलाना जो बीएस है वो आजकल ट्रेंडिंग में है, इसको आप बीएस की डिग्री ले लें, तो एक बार उसकी आउटलाइन पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर की जरूर गो थ्रू करें, और खुद से पूछें कि आप ये तमाम कोर्सेज पढ़ लेंगे, कि आप ये सारे जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं जिनमें कोडिंग भी इन्वॉल्व होगी, जिनमें मैथ भी इन्वॉल्व होगा, जिनमें स्टैट भी इन्वॉल्व होगी, जिनमें आपको टेक्निकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और उसमें बहुत सारी मेमोरी आपको अपडेट अपनी करनी पड़ेगी, क्या आप वो कर लेंगे? खुद से पूछें। अगर कर लेंगे देन बहुत अच्छी बात है, जाएं और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें और जाके उस फील्ड के अंदर आप महारत हासिल करें, आप बहुत अच्छा आगे इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन अगर आपको एलर्जिक है, सपोज मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मुझे बहुत मुझे कहा गया कि आप सीए कर लें, आप सीए छोड़ के एसीसीए कर लें, मैनेजमेंट में आप अकाउंट्स वगैरह में आ जाएंगे तो काफी इसका आगे स्कोप है। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यही काम किया, मैंने एक बीकॉम की एक बुक रैंडम उठाई, मैंने उसको थोड़ा सा रीड किया, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया, मैं मीडिया में आ गया। तो इसी तरह से जो कुछ लोग मेडिकल में बहुत अच्छे होते हैं, देखो इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को हर किस्म की जो है ना ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ उसकी कैपेसिटीज दी हैं। बाज़ लोगों की स्किल्स साइको मोटर स्किल्स होती हैं, वो कुछ करके सीखते हैं। बाज़ लोग विजुअल थिंकर होते हैं, वो देख के सीखते हैं। बाज़ लोग जो है ना वो वर्बल थिंकर्स होते हैं। बाज़ लोगों को मैथ बहुत अच्छा समझ आता है, बाज़ लोगों को नहीं आता, ये कसूर उनका नहीं है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आप उस तरह उसके लिए बने ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपने एक फील्ड चूज कर ली है तो उसको सोच समझ के चूज करें। ट्रेंड को भूल या ट्रेंड क्या, देखें हर फील्ड में आपने रास्ते निकालने हैं। हर बंदा मुझे एक मेरे एक बॉस थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, कहते जब आपने कोई मिसाल देनी होती है ना तो हमेशा उन लोगों की मिसाल दिया करें जो लोग उस फील्ड में कामयाब हैं, कभी नाकाम लोगों की मिसाल ना दें। तो अगर आपने सीए करना कि नहीं करना, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलें जो उस फील्ड में कामयाब है, वो आपको सही मशवरा देगा। नाकाम से मिलना, नाकाम के कहने आपने ये नहीं आना, वो अपनी नाकामियों का पर्दा आप पे डाल देगा, मलबा सॉरी आप पे डाल देगा। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों से मिलें, लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, कामयाब लोगों से मिलें जो फील्ड में कामयाब है, वो आपको सही मशवरा भी देंगे। फिर किसी एक मशवरे पर रिलाई ना करें, मुख्तलिफ एडवाइसेस मुख्तलिफ लोगों से लें, फिर अपने खुद से पूछें कि am I eligible और am I competent enough to opt this field। यकीन करें दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे आपको वो स्कोप ना हो, स्कोप होता है लेकिन रास्ते आपने खुद बनाने होते हैं।
1: ये सारी बात पोटेंशियल की होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, बहुत मजा आया, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला और मुझे पूरा यकीन है कि सामाइन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ सुनते रहें FM 92.6, मैं हूं मरियम इरशाद फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट थे डॉक्टर आतिफ अशरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड HOD फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
3: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया.

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं ऑक्सीजन मुहैया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं परिंदों के लिए ठिकाना है सैलाब में रुकावट बनते हैं ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक खवातीनो हजरात टू फैकल्टी आवर। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया। हमारा प्रोग्राम फैकल्टी आवर के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ के तावन के साथ हम बात कर रहे थे लीगल डायरीज के ऊपर, जिसके एपिसोड 1 में हम बात कर रहे थे चाय, केस लॉ और यूनिवर्सिटी लाइफ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटोरशिप के ऊपर। इज्जत, उसी को लेते चलते आप एक चीज़ जो हमारे लीगल एजुकेशन है उसके अंदर क्या एक चेंज होगा जो के बच्चों के लिए भी और इन प्रैक्टिकल लाइफ जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे उनके लिए ये पाथ ईजी करेगा।
2: अगर एमएल लीगल एजुकेशन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मूट और मॉक ट्रायल्स होते हैं, तो मॉक ट्रायल में पीछे हमने एक काम स्टार्ट किया था 2024 में कि आप फुल जो फाइल होती है ना, केस फाइल बनाना सिखा देते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे प्रोफेशनल फील्ड में हेल्प करेंगी। तो हमें सिर्फ स्टडी के साथ साथ अगर हमें प्रोफेशनल ऐसे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाएँ, लाइक के हाउ टू प्रिपेयर अ कम्प्लीट केस फाइल, जो कि इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, हम जो एडवोकेसी का आई गेस लेवल 4 है उसमें भी ये पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर ये स्टार्टिंग क्लासेस से ये स्टार्ट किया कर दिया जाए फ्रॉम द 3rd और 4th सेमेस्टर, कि आप उन्हें पूरी केस फाइल बनाना सिखाएं, उसके साथ साथ आप उन्हें सिखाएं कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो मूट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम इसे जो एडवोकेसीज हैं हमारी उनमें ये कंपल्सरी कर दें कि हर बंदा आके अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करे, तो इससे ना सिर्फ उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होंगी बल्कि उनका लीगल आर्ग्यूमेंट स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टडीज को प्रोफेशनल लेवल के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे कि हमें ये चीजें फील्ड में हेल्प कर सकती हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सिर्फ हमें स्टेट्यूट पढ़ाएं या एक्ट पढ़ाएं और उसके आगे इंटरप्रिटेशन पढ़ाएं।
1: इस आपके थ्रू आउट आपकी जर्नी के अंदर एक तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, जो यूनिवर्सिटी से बाहर लाइफ थी आपकी, जैसे कि जो हॉस्टल लाइफ थी या आपकी सिटी के अंदर लाइफ थी, उसके अंदर आपका सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा था?
2: एमन, एक चैलेंज का कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया था, तो इधर सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो सबसे मुश्किल बात थी वो था यहाँ पे सर्वाइवल, कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँगी, क्योंकि आप एक बिल्कुल चेंज इन्वायरमेंट से एक बिल्कुल अलग जगह पे आ रहे हैं, और उसके अलावा आई एम द फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम माई फैमिली के जो ऐसे बाहर हॉस्टल में आकर रह रहा है, तो मुझे वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा, कि मुझे ये हॉस्टल लाइफ से वैसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और उसके अलावा ना यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो खास मुझे कोई फेस नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे आके फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, खाने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसाइल थे, कि यहाँ पे आप जाहिर है जब बाहर से आप 24/7 खा रहे हो, आपको घर का खाना तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको हाइजीन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग पे मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मसाइल आए थे।
1: इज्जत, जो हमारे सारे खवातीन हज़रात सुन रहे हैं उनके लिए अगर कोई उनमें से लॉ की फील्ड ऑप्ट करना चाहता है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी कि नंबर 1 वो ये फील्ड क्यों चूज करें, नंबर 2 अगर उन्होंने चूज कर लिए तो वो किस माइंडसेट के साथ इस फील्ड को अप्रोच करें?
2: एमन, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मैं उनको एडवाइस क्या देना चाहूँगी, तो अगर तो कोई चूज़ करना चाह रहा है तो मैं उसे कहूँगी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपने पेयर्स से सुना है कि हमारा लॉ में इंटरेस्ट था लेकिन हम परस्यू नहीं कर सके ड्यू टू दिस रीज़न या कुछ भी, लेकिन आपको परस्यू करना चाहिए, अगर आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ो, क्योंकि आपका अगर एक फील्ड में इंटरेस्ट है और आप उसको पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको सिर्फ अपने राइट्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ का पता नहीं चलता, आपको ये भी पता चलता है कि अगर मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है मैं उसकी रेमेडी क्या क्लेम कर सकता हूँ, आपको अपने हक में आवाज़ उठा सकते हो। आप बेसिकली अगर आपको अपने इन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं ना पता, तो आपके साथ कुछ जुल्म या ज्यादती भी हो रही है ना, तो आप किसी के मुंतजर रहते हो कि कोई आपके लिए आवाज़ उठाए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज के दौर में हर किसी को अपनी इन बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर इस फील्ड को चूज़ करें। और उसके बाद आपने कहा कि अगर किसी ने चूज़ कर लिया है तो वो उसको किस माइंडसेट से लेके चले, तो अगर कोई फीमेल है तो फीमेल उसको काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि आपने बेटा पढ़ तो लिया, लो आप आगे कंटिन्यू तो नहीं करेंगे, क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर हमने पढ़ा है तो हमने उसको कंटिन्यू करने के लिए पढ़ा है, तो वो अपने अपना जो बिलीफ है ना वो फॉर्म रखें कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अगर कोई लड़का है. क्योंकि आप अगर अपने में फोकस है ना, ज़्यादातर बच्चे इस बात से डर जाते हैं कि हम स्टार्टिंग पे जाएंगे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्लेसमेंट्स के कुछ इशू आ जाते हैं डिग्री के बाद, या कुछ को ये होता है कि अब हमने 5 साल पढ़ा है, अब हम आगे से अगर हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे तो हमें क्या फ़ायदा इसको परस्यू करने का. तो आप थोड़ा सा खुद पर बिलीव रखें, अगर आप ने पढ़ा इतना 5 साल पढ़ के उसको आगे कंटिन्यू करें. आपको अगर आपकी लीगल आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स अच्छी हैं, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं कहूँगी कि आप फर्म रहें अपने बिलीव्स के साथ कि मैं ये कर सकती हूँ, आप इसे करें. सिर्फ इधर उधर की बातें सुन के आप उस अपने आइडिया को या अपने आप को पर्सनल होने दें कि मैं ये नहीं कर सकता. खुद पे बिलीव रखें बजाय कि इधर उधर की आवाज़ों के, क्योंकि अगर आपको कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं तो कुछ लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं. तो आप अप्रिसिएशन पे फोकस रखें और अपना जो जर्नी है वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें.
1: क्या आपने अपनी जर्नी के अंदर दोनों चीज़ें देखी है, इनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट?
2: जी अमन, अगर मैं बात करूँ डिस्करेजमेंट की, तो सबसे आप ये इंसानी आई गेस नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि आप जब देखते हो ना कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है तो आप उसको उस वक्त के लिए आप बहुत खुश होते हो. लेकिन आपके जो जहन में वो कहते हैं ना छाप रह जाती है किसी चीज़ की, वो यही है कि अगर आपको कोई डिस्करेज करता है ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है और आपके जहन में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बात आ जाती है कि शायद ये बात ठीक थी, मैं ये नहीं कर सकता था. क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मुझे ये सुन सुन के लगता था मैं शायद अच्छा बोल नहीं सकती, मैं लीगल आर्ग्यूमेंट्स अच्छे नहीं दे सकती. लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे टीचर्स ने, मैम सबा ही थी, मेरा जो पहला मूट हुआ था एडवोक्सी 1 का, तो उसमें वो एज एन एडजुडिकेटर थी, तो उन्होंने, मैम सादिया थी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि बेटा आप बहुत अच्छा बोल सकते हो. उसके बाद से फिर मैंने मूट में पार्टिसिपेट किया, मैंने मॉक ट्रायल्स में हिस्सा लिया, मैंने उसमें जीता भी. तो ये है कि आप अगर डिस्करेजमेंट, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया, मैंने अपने रिलेटिव्स की तरफ से भी फेस किया, लेकिन अगर ये है कि आप उसकी तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको जो अप्रिसिएशन मिलती है ना आपको लगता है कि वो बहुत कम है और जो डिस्करेजमेंट आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है. लेकिन नेगेटिव साइड को एक तरफ के लिए रख के आप पॉजिटिव साइड पर फोकस करो कि आप अगर पॉजिटिव साइड पर फोकस करोगे ना तो आप खुद को ज़्यादा सक्सेस की तरफ जाते हुए पाओगे, इंस्टेड ऑफ कि आप नेगेटिविटी को सोचते रहो, ये सोचते रहो कि मुझे इस काम में डिस्करेजमेंट मिली है मैं ये कर ही नहीं सकता. खुद पे यकीन रखें और जो आप लोग, आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं उन पे कहें कि देखिए अगर मुझे डिस्करेजमेंट मिली है अप्रिसिएशन भी मिल रही है और मैं खुद को बेहतर कर सकता हूँ. आपको खुद पे गरूर भी नहीं होना चाहिए और आप खुद को ये भी नहीं समझो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बस आपका बिलीफ फॉर्म होना चाहिए और आप अपना काम करते रहो.
1: इसे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अक्सर कहते हैं कि उनको बहुत मसला होता है फ्रॉम डीलिंग विद, कि या तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर पार्ट लें या वो सिर्फ पढ़ाई के अंदर लें, तो आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि वो दोनों को कैसे बैलेंस करें? क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर्स हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल लर्निंग है जो कि हमने सीखनी, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आपको दुनिया, लोग कैसे ग्रुप्स में काम करते हैं, आप लोग कैसे बिल्ड करते हैं यूनिटी के साथ, एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, वो सब कुछ सिखाता है. तो उन दोनों को चीज़ें साथ साथ लेकर, स्पेशली जिन लोगों को एक, जिसको कहते हैं ना क्रेज़ होता है कि उनको हाईएस्ट GPA चाहिए, उनको हाईएस्ट CGPA चाहिए, मेरे ख्याल से तो ये उनका एंड गोल नहीं होना चाहिए, उनको दोनों के बीच में बैलेंस रखना चाहिए. लेकिन अगर वो रखना चाहें तो वो कैसे होगा?
2: इमन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर मैं अपना बताऊँ तो स्टार्टिंग पे मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी मैंने तभी से सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो यहाँ पे स्टडी है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने आई हूँ और मेरा सोसाइटी में एज एन स्लीपिंग मेंबर कह लें वैसे थी. लेकिन फिर मैंने वक्त के साथ साथ ये नोट किया कि आप, मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि आपको जो पहले 2-3 सेमेस्टर होते हैं वो आपको एडजस्ट होने के लिए लगते हैं, तब आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें. जब आपको लग रहा है कि 3-4 सेमेस्टर्स तक आप अपनी स्टडीज़ में बेहतर हो चुके हैं, फिर आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ जाएं. क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही स्टडी करके और CGPA की तरफ फोकस्ड करके चलते रहेंगे ना, तो फिर आपको ज़िंदगी में यही कह रहे हैं कि आपको ना बहुत कम से आपका एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है. अगर आप साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो आपको स्टडीज़ में भी हेल्प करती हैं. अगर हमारे मूड होते हैं, मौक होते हैं, हम वो लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को डिबेट का होता है शौक, पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, आप जब ये चीज़ें करते हैं ना तो आपका एक्सपोजर और ज़्यादा होता है, आपको और ज़्यादा अच्छा बोलना आता है, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती है, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है. और वो सिर्फ ये नहीं कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपको सिर्फ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ उन फील्ड्स में सीखने का मौका मिल रहा है, आपको वो आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प करती है. अगर हम अपनी फील्ड की बात करें तो अगर कोई इंसान बहुत अच्छे मूड कर रहा है, डिबेटर बहुत अच्छा है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स बहुत अच्छी करता है, या और भी कोई उसको उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो वो सिर्फ आपको डिग्री में भी नहीं, आपको पूरी लाइफ में आगे हेल्प करती हैं. आपको आगे जॉब्स करनी है, आपको ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो आपको, मैं कहती हूँ, यूनिवर्सिटी में सीखनी चाहिए. आप अपने इंटर तक सिर्फ पढ़ के आ रहे होते हो, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो अगर करते भी हैं तो वो माइनर स्केल पर होता है. तो यूनिवर्सिटी में आपको ज़रूर आपके जो पहले एक साल कह लें, दो सेमेस्टर या तीन सेमेस्टर आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो. जब आपको समझ आ गया कि मैं इतने टाइम में अपना काम कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके बाद आप अपनी रूटीन बनाओ कि आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी साथ साथ करते रहो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है.
1: खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: अब अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हुए इस दिन मैं आपसे पूछ लूंगी, आपका एक ऐसा कौन सा जिंदगी का लाइफ मोटो है जिसको पर आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और वो अभी तक उधर ही खड़ा है जो आपके पिलर बना है स्ट्रेंथ का इन योर मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, इन योर हैप्पीएस्ट टाइम्स?
1: एमन, इसमें तो अभी मेरा प्रायरी एक्सपीरियंस है. मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, मेरी ज़िंदगी का बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है वो है बिलीफ सिस्टम. अगर आपको यकीन है ना कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं और ये आपसे जा रही है. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने जीपीए को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्नड होते हैं कि हमारा जीपीए यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए. तो जीपीए सब कुछ नहीं होता. या कोई भी चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा हिस्सा नहीं बना लो कि इस चीज़ के बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. आपका बिलीव होना चाहिए कि अगर मेरे से कोई चीज़ जा रही है तो उससे ज़्यादा बेहतर मेरे पास वापस आएगी. और आपका ये जो यकीन है ना अल्लाह ताला पे कि वो आपको हमेशा बेहतर से बेहतरीन से नवाजता है, ये बहुत, मैं कहती हूँ कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया. कि अगर आपका कुछ थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है ना, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. अगर मतलब मेरा ये थोड़ा सा स्टडीज़ के रिलेटेड था मसला, तो मुझे होता है कि अगर चलो यहाँ से कम मार्क्स आ गए, हो सकता है इसमें कम आना बेहतर हो मेरे लिए, इससे ज़्यादा कुछ और बेहतर अल्लाह ताला ने लिखा हो वो मुझे मिल जाएगा. तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह ताला पे.
0: ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के अंदर फैकल्टी आवर, फैकल्टी ऑफ लॉ के ताबुन के साथ हमने अपने सेगमेंट का एग्जाज़ किया लीगल डायरीज, जिसके एपिसोड 1 के अंदर हमने बात की कैंपस लाइफ से लेकर केस लॉ और चाय के बारे में, जहाँ पर इज़्ज़त ने, हमारी गेस्ट ने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी करियर के अंदर ट्रांजिशन एज अ लॉ स्टूडेंट भी बताया. इज़्ज़त, एनी फाइनल वर्ड्स जो आप अपने ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहेंगी जो सारे लोग आपको सुन रहे हैं?
1: एंड पे एमन, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ ऐसी हैं जो लॉ करना चाहती हैं लेकिन वो फैमिली प्रेशर की वजह से या कुछ लोगों की बातों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं आती, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप इधर उधर की बातों पे फोकस ना करें. और आपको अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस फील्ड को कंटिन्यू करें. और ये मिथ आई गेस अब बहुत पुरानी हो चुकी है कि ये मेल डोमिनेंट फील्ड है और इसमें फीमेल्स को नहीं आना चाहिए. आप आएँ, आप साबित करें कि आप ये काम कर सकती हैं और अच्छे तरीके से साबित करें. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखें. अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो. और आप किसी भी थोड़ी सी डिस्करेजमेंट की बेस पे उस काम को छोड़ नहीं दो अधूरा. आप साबित कदम रहो और वो काम करके दिखाओ.
0: थैंक यू सो मच. इसके साथ करते हैं आप अपने प्रोग्राम का इख्तिताम. नेक्स्ट वीक हम हाजिर होंगे आपके साथ नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया. अल्लाह.

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है। Ladies and gentlemen.

0: www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: किसी की बस जरा सी

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: वही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

लगी जंग सनु चुप चुपीता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे खेस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बा असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आ इक किलू असा खुद नू भुले सांवला सा हरदम जपया तू।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6, मैं हूं मरियम इरशाद। आज एडमिशन कैंपेन के साथ और मेरे साथ हैं डॉक्टर आतिफ अशरफ, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के साथ लिंक्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: सर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो इंटर के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो कैसे FMMC में एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशली BS में?
2: देखिए जी, जो इंटर करके आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम उन्हें BS की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। 4 साल डिग्री है ये, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन। और इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें 45% मार्क्स जरूरी हैं लेने। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है, उसकी असेसमेंट होती है, देन मेरिट लिस्ट लगती है, देन एडमिशन आपको ऑफर किया जाता है। तो BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में ये 4 साल के प्रोग्राम में आप पहले 5 सेमेस्टर तक जनरल कोर्सेज प्लस मेजर कोर्सेज प्लस इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ते हैं। इसमें कुछ कोर्सेज HEC के कंपलसरी हैं, कुछ कोर्सेज मेजर इसमें हमने फंडामेंटल बेस के इसमें ऑफर किए हुए हैं। उसके बाद आफ्टर 5th सेमेस्टर हम 2 स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं स्पेशलाइजेशन की। एक स्ट्रीम है पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया, और एक स्ट्रीम है फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया। जो स्टूडेंट्स आफ्टर 5 सेमेस्टर्स पढ़ने के बाद, जब वो उनका एक जहन बन जाता है कि उन्होंने कहाँ आगे अपने करियर को लेके जाना है, अगर इफ दे वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, और अगर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना है, न्यूज में काम करना है, जर्नलिज्म में काम करना है, प्रोडक्शन साइड पे जाना है, देन द चॉइस इज विद फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया स्पेशलाइजेशन। और अगर उन्होंने दूसरी तरफ जाना, लाइक अगर उन्होंने PRO बनना है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करना है, कंपेन डिजाइन करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उसकी प्रमोशन करनी है, देन वी हैव द स्ट्रीम ऑफ PR एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये दोनों जो स्ट्रीम्स हैं, ये फुली इक्विप करती है स्टूडेंट्स को कि वो BS करने के बाद अपनी जो करियर पाथवे को चूज कर सके, और ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो पाथवे है उसको भी ऑप्ट कर सके। तो दोनों स्ट्रीम्स के अंदर हम फुली तैयार करते हैं स्टूडेंट्स।
1: और सर, यूजुअली ये होता है कि जब बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ये चीज रिटेलिएट की जाती है कि क्या करोगे BS फिल्म टीवी और डिजिटल मीडिया पढ़ के, या क्या करोगे BS मास कम्युनिकेशन पढ़ के। तो हम ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जिससे वो अपनी आप को और अपने कैरियर को मजीद अच्छे से पॉलिश कर सके?
2: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दिन ब दिन चेंज हो रही है, और अगर हम खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू डिसिप्लिन के साथ, न्यू टूल्स एंड टेक्निक के साथ, हम पीछे रह जाएंगे। हमारी FMMC में कोशिश होती है कि हम अपना कुरिकुलम कीप ऑन रिवाइज करते रहते हैं एज पर नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एज पर द चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। तो उसमें हमने अभी भी जो नया रोड मैप दिया है, अभी जो फॉल में जो हम एडमिशन कर रहे हैं, इसमें हमने अलाइन किए अपने कोर्सेज AI के साथ, डिजिटल टूल्स के साथ, और एडवांस जो फिल्म मेकिंग के जो आजकल जो ट्रेंडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने तमाम कोर्स आउटलाइन के अंदर। तो इस तरह हमारे जो रिसोर्स हैं, वो रिसोर्सेज हमारे इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के लोग यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे हम बाहर से लोगों को इन्वाइट करते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, PR के एक्सपर्ट्स हैं, एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट्स हैं, फिल्म के एक्सपर्ट्स हैं, टीवी इंडस्ट्री से लोग आते हैं, वो आके यहाँ पे बच्चों को अपना लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस तरह से उनकी ग्रूमिंग होती है, ताकि यहाँ पे ग्रूमिंग के साथ साथ वो स्किल सीखते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारे पास लैब है, हमारे पास टीवी प्रोडक्शन हाउस है, हमारे पास 24/7 रेडियो स्टेशन है, जहाँ पे बच्चे एज अ लैब ना यूज करते हैं, और यहीं पे ही हमारे UCP के अंदर ही क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं, जैसे मीडिया क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, यहाँ पे बच्चे कैपेसिटी बिल्ड करते हैं थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू वर्कशॉप्स। फिर वहीं से बच्चे मोस्ट ऑफ देम ड्यूरिंग देयर जर्नी इन देयर BS 3rd में या 4th सेमेस्टर से वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं या अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह उनकी डिग्री के साथ साथ उनका जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो भी बढ़ती रहती है।
1: तो सर, हम लोग प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल दोनों तरह से उनको रेडी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी दे रहे हैं, थ्योरेटिकल भी सिखा रहे हैं। तो हमारे जो एलुमनाई हैं FMMC के, वो क्या डिफरेंट जगहों पे अच्छे से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपने कैरियर में, उन्होंने उसी तरह से अचीवमेंट्स ली हैं जिस तरह से वो यहाँ डिजायर और गोल लेकर आए थे?
2: हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है एलुमनाई का, हमने अपने तमाम एलुमनाइज को लूप में रखा हुआ है, और वो एलुमनाइज हमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी कहीं मार्केट में कोई पोजीशन आती है, दे कनेक्ट विद अस, एंड यहाँ से फिर जो हमारा जो एक स्टूडेंट जो तैयार हो रहा है उसके साथ रबते हम करवा देते हैं। इस तरह हम एलुमनाई नेटवर्क की मीटिंग्स भी करवाते हैं, और यहाँ पे उनको अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो करंटली एनरोल्ड है उनको चैनलाइज करते हैं कि उनके साथ अटैच हों, और वहीं से भी जो उनके डिजायर्ड जो उनकी गोल्स हैं उनको अचीव कर सके।
1: और सर, हमारे स्टूडेंट्स मीडिया आउटलेट्स में काम कर रहे हैं एज इन प्रोफेशनल्स?
2: मेरे ख्याल में लाहौर में सबसे ज्यादा जो इंडक्शन है मीडिया स्टूडेंट्स की, वो UCP से ही है। बिकॉज लाहौर में जितने भी मेन चैनल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स के नाम ले, सिवाय एक, एक, एक दो चैनल्स के जो कराची बेस्ड हैं, अब तकरीबन तमाम इंडस्ट्री लाहौर में शिफ्ट हो चुकी है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं एज इंटर्न या एज अ इनिशियल लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, डिजिटल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द आर फ्रॉम यूसीपी। इवन के एंकर्स जो हमारे हैं, काफी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, रिपोर्टर के तौर पे कर रहे हैं और डेस्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं।
1: दैट्स रियली ग्रेट। और सर, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो अगर एमफिल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो हम यूसीपी में एफएमएमसी में एमएस कौन सी स्पेशलाइजेशंस में करवा रहे हैं और इसका क्या क्राइटेरिया?
2: एमएस या एमफिल ये 18 साल डिग्री है, इसमें हम तीन मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। एक एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये रिसर्च ट्रैक है, क्योंकि जिन्होंने फर्दर पीएचडी करनी है उनके लिए ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है कि यहाँ पे वो फुल फ्लेज रिसर्च और थ्योरी सीखते हैं, देन अपने करियर को पीएचडी लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। इसके अलावा दो और प्रोग्राम्स हैं, इनमें एक एमएस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस है और एक एमएस फिल्म एंड डिजिटल मीडिया है। ये दोनों एमएस करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इनमें रिसर्च का पोर्शन कम है, लेकिन इसमें जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो ज्यादा है। लाइक जो प्रोफेशनल जाना चाह रहे हैं पीआर एडवर्टाइजिंग के अंदर या फिल्म मेकिंग के अंदर या टीवी के अंदर या डिजिटल मीडिया के अंदर, वो ये एमएस पीआर या एमएस फिल्म एंड डिजिटल मीडिया को ऑप्ट करते हैं। और ये हम तकरीबन एज पर एचईसी पॉलिसी हम 1.5 से 2 साल में डिग्री करवा देते हैं, और इसमें हम पहला जो साल है वो कोर्स वर्क का है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट या थीसिस होता है। अच्छा, इसका जो आपने पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो इससे पहले मैं बात करूंगा स्कॉलरशिप्स की। तो जो स्कॉलरशिप है वो हम ऑफर कर रहे हैं जो अक्रॉस द बोर्ड जो तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको और जो टीचर्स हैं, अगर वो एमएस में आना चाह रहे हैं तो हमने फ्लैट 50% डिस्काउंट या स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। हमारी टोटल फीस का 50% उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यूसीबी एलुमनाइज हैं उनके लिए 3.8 सीजीपीए के ऊपर 75% डिस्काउंट है और 3.5 के ऊपर 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा जो अदर देन जो हमारे यूसीबी के जो ग्रेजुएट्स जो आना चाह रहे हैं एमएस में एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए 3.8 सीजीपीए के ऊपर 75% डिस्काउंट है और 3.6 के ऊपर उन्हें हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो ये डिस्काउंट इसलिए देने के हम एनकरेज कर रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आए और यहाँ के प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में रह के वो तमाम स्किल्स सीखे और अपने प्रोफेशनल लाइफ को मजीद इम्प्रूव करें।
1: सर, जैसे भी आपने बात की कि हम एमएस में एडवर्टाइजिंग इन पीआर, एमएस फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया और एमफिल रिसर्च ऑफर कर रहे हैं, तो हमारी जो फैकल्टी है वो किस तरह से बाकी फैकल्टीज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को हम वेल इक्विप कर रहे हैं कि जब वो मार्केट में जाएं तो वो अपनी आपको अच्छे से वहां अपनी पहचान बना सके, उनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग हो?
2: यूसीपी की फैकल्टी ऑफ मीडिया, ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में सबसे बड़ी फैकल्टी हमारी फैकल्टी है। सबसे बड़ी से मुराद इनकी जो आउटपुट है वो बहुत बड़ी है। मसलन हम अभी तक 40 पीएचडीज प्रोड्यूस कर चुके हैं पूरी फैकल्टी, जो कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। हमारा रिसर्च ट्रैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास जो पब्लिकेशंस के हवाले से हम एक एचजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हमारा निकलता है। इसके अलावा हमारी जो रिसर्च है वो जो हमारा क्राइटेरिया रिसर्च का वो एचजीसी से एक स्टेप ऊपर है। लेकिन अगर आपने पीएचडी करनी है तो एज पर एचजीसी स्टैंडर्ड आपको वाई कैटेगरी के जर्नल्स की जरूरत होती है पब्लिकेशन के लिए। हम यहाँ पे उसे एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, हम पीएचडी की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक्स कैटेगरी, कम से कम एक्स कैटेगरी या डब्ल्यू कैटेगरी के पेपर्स को एक्सेप्ट करते हैं, देन हम पीएचडी की डिग्री अवार्ड करते हैं। दूसरा एक तो हमारी होगी रिसर्च साइड, हमारे पास 11 पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि इस सफर को आगे लेके चल रहे हैं, और बाकी जो हमारी दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जब एमफिल की बात करें एमएस फिल्म और एमएस एडवर्टाइजिंग की जो फील्ड है उसमें हमारा जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो मैचलेस है। मसलन हमारे यहाँ जो हमारा रेडियो स्टेशन है ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी जो 24/7 काम करता है। दूसरा हमारे पास एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मीडिया हाउस के अंदर न्यूज प्रोडक्शन होती है, एक स्टूडियो होता है, उसमें क्रोमा होता है, मल्टी कैमरा प्रोडक्शन सेटअप पूरा लगा होता है, उसके अंदर आप एक प्रॉम्प्टर होता है, सीलिंग लाइट्स होती हैं, उसकी टॉक शो के सेट्स होते हैं, हार्ड सेट्स होते हैं, वो तमाम चीजें यहाँ अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आके टॉक शोज की, न्यूज की और इवन के प्रोडक्ट फोटोग्राफी की प्रैक्टिस भी करते हैं। और हमारी जो एक और स्ट्रेंथ ये भी है कि हमने मार्केट से हम लोगों को एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और यहाँ आके वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स करवाते हैं। बड़े बड़े नाम है, हमारा मीडिया सिंपोजियम हर साल होता है, हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम 2 करवा चुके हैं, इसके अलावा हम एमओयू साइन कर चुके हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ, न्यूज चैनल्स के साथ, एड एजेंसीज के साथ, डिफरेंट और सेक्टर्स के साथ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ सीख के असल जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उसका थोड़ा टेस्ट ले सके। इसके अलावा हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप तो करवाते ही करवाते हैं, हम उनको भी इंडस्ट्री में भिजवाते हैं ताकि वहां जाके इंडस्ट्री का टेस्ट लेके आए और यहाँ आके अपनी जो लर्निंग है उसको यहाँ पे अकोमोडेट करें अपनी टीचिंग के अंदर। तो इस तरह हमारी जो दोनों स्ट्रीम्स हैं, रिसर्च स्ट्रीम्स हो या प्रोफेशनल स्ट्रीम हो, दोनों के जो एक्सीलेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, एनवायरमेंट मौजूद है, लैब्स मौजूद हैं, इक्विपमेंट मौजूद है और हमारा आउटपुट जो है वो बाकी एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज से हमारा आउटपुट काफी बेहतर है। दैट्स व्हाई आई कैन से कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, इज अ बेस्ट चॉइस फॉर ऑल द पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु वांट टू डू देयर बीएस और एमएस और पीएचडी ओवर हियर, एंड हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं।
1: और सर, अगर उन्होंने अप्लाई करना हो तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
2: हमारा बहुत इजी ऑनलाइन पोर्टल है यूसीबी का, वहाँ पे जाएं, एडमिशंस के टैब के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे पोर्टल पे अपना डाटा शेयर करें और उसके बाद आपका वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाता है।
1: और सर, अगर इन केस ऑफ एनी क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को बीएस में या एमफिल में एडमिशन लेने से पहले कोई भी किसी किस्म की क्वेरी है तो वो किससे कॉन्टेक्ट करके अपने सवालात की या मुश्किल का या जो भी वो सोच रहा है, वो जो करना चाह रहा है, वो क्लियर नहीं है कि वो कहाँ एडमिशन ले, कैसे ले, क्या कर सकता है, वो कैसे किससे पूछ सकता है?
2: सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो यहाँ पे विजिट कर लें यूसीपी में, एडमिशन ऑफिस में तमाम लोग बैठे हुए हैं जो उनको गाइड करने के लिए। फैकल्टी विजिट कर सकते हैं, मुतलका फैकल्टी वहाँ पे जाएं। इसके अलावा फोन भी अवेलेबल है, एक नंबर दिया गया है, शेयर्ड नंबर है वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे फोन कॉल करके भी वो गाइडेंस ले सकते हैं।
1: और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी हमसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है,
2: मीडिया के थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, वहाँ से भी आपको क्वेरीज का आंसर मिल सकता है। लेकिन बेहतर है कि मैं कहूंगा कि तमाम जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट देखें। यहाँ पे सिर्फ एकेडमिया नहीं है, यहाँ पे रिसर्च भी है, यहाँ लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज भी हैं, लैब्स भी हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे जिमनेजियम भी है, यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज हैं, कैफेज हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को लगता है कि वो यूनिवर्सिटी के कल्चर के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन नहीं मिलती बल्कि एक्स्ट्रा कुलिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स का ओवरऑल एक उनको टेस्ट मिलता है। यहाँ पे हमारी यूसीबी मुसलसल पिछले कई साल से एचईसी का स्पोर्ट्स कंपटीशन विन करती आ रही है, तो हमारा एक नाम है स्पोर्ट्स के अंदर भी। तो इसलिए जब भी आप यूनिवर्सिटी यूसीबी का लिखेंगे गूगल के ऊपर इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, तो आपको एचईसी में सबसे टॉप पे यूसीबी नजर आएगी।
1: अभी जैसे आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
2: एक कैटेगरी है टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, उसमें अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, या आपके पास कोई टैलेंट है, तो अगर आप समझते हैं कि आप उस टैलेंट की बेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाह रहे हैं, तो यूसीबी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन दे देगी। लेकिन आपने अपना टैलेंट एक कमेटी के सामने प्रूफ करना होगा, कमेटी के थ्रू गुजर के फिर आप उसमें टैलेंट कमेटी के सामने आप अपना केस रखते हैं, देन आपको वो असेस करते हैं, देन आप अगर इफ दे थिंक यू आर टैलेंटेड देन यूसीबी कैन गिव यू 100% स्कॉलरशिप।
1: जैसे अभी आपने स्कॉलरशिप की बात की, तो सर ये सुनने में बड़ा कॉमन मिथ भी है और सुनने में भी आता है कि स्टूडेंट्स को एक दफा स्कॉलरशिप दे के एडमिशन दे दिया जाता है और उसके बाद यहाँ टीचर्स जो है स्कॉलरशिप खत्म कर देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, अगर एक स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप मिला है इसका मतलब यह है कि वो इतना टैलेंटेड है तो उसको स्कॉलरशिप मिला है। हाँ, दूसरी जो बाकी डिसिप्लिनरी एक्शन होती है, लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट क्लास में आया ही नहीं है तो उसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है। एक बच्चा आया, एक स्कॉलरशिप लेके आया है, उसका सीजीपीए लेट्स सपोज 3.8 था, उसको 75% स्कॉलरशिप मिल गया फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद अगर वो अपनी उस प्रोग्रेस को मेंटेन नहीं कर पाता और बार बार लापरवाही करता है, उस तरह की क्वालिटी नहीं अपनी शो करता एकेडेमिया में, देन ऑटोमेटिकली फिर उसके ऊपर उसका असर उसके ऊपर आएगा। तो इसलिए जो स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप मेंटेन करना पड़ता है अपना, ताकि यूनिवर्सिटी समझे कि ये बंदा काबिल है और ये बंदा इस लाइक है, इसको तमाम ईयर्स जो आने वाले साल हैं उनमें वो उन्हें वही स्कॉलरशिप उनका इंटैक्ट है। और हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो टैलेंटेड बच्चा होता है, जो कि एक काबिल एक अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो उन्हीं मार्क्स को कंसिस्टेंटली फिर उसको फॉलो भी करता है। तो बड़े कम केसेस ऐसे हैं जिनमें स्कॉलरशिप उसका खत्म हुआ हो, क्योंकि वो बच्चे की अपनी उसमें कोताहियां होती हैं जिसका यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकती।
1: और ये बिल्कुल एक जर्नल सी मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ना हम पे इम्पोज किया जाता है, ना हमें कहा जाता है, ना ही हम स्टूडेंट्स की जानबूझ के स्कॉलरशिप्स को खत्म करते हैं, बल्कि ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन मैंने तो आज तक इतने टाइम में नहीं देखा।
2: ऐसा बिल्कुल मिथ है ये, खुद जानबूझ के कोई खत्म नहीं करता। अगर कोई ऐसी अगर लेट्स से ना एफर्ट्स किया, अगर किसी बच्चे ने वो सारा सेमेस्टर क्लास में नहीं आया और उसने वर्स्ट परफॉर्म किया है, ना कोई असाइनमेंट जमा करवाई, ना क्विज जमा करवाया, ना पेपर में वर्स्ट परफॉर्म किया है, तो आप उसे ए ग्रेड तो नहीं दे सकते ना। हमने एक क्वालिटी श्योर भी करनी है, क्योंकि वी आर बाउंड, एथिकली हम बाउंड हैं, हम क्वालिटी श्योर करें। अगर वहां पे लेट्स सपोज ने सी या डी ग्रेड लिया है तो उसका स्कॉलरशिप कैसे मेंटेन रह सकता है? तो डेफिनेटली अगर वो मेहनत करेगा तो फिर उसको स्कॉलरशिप मेंटेन हम करेंगे, अदरवाइज इस तरह तो फिर दुनिया का हर जो बच्चा है वो अगर लेट्स सपोज इंटर में अच्छे नंबर लेके आ गया है और पहले सेमेस्टर में फीस अवेल कर ली है स्कॉलरशिप वाली, उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया है, तो क्या हम उसको डिग्री दे देंगे?
1: क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपका खुद का एफर्ट पुट करना बहुत मैटर करता है। सर इसी के साथ मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स इंटर करके पास हुए हैं और वो भी बहुत कंफ्यूज हैं कि वो एडमिशन लें या वो वेट करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कि वहां पे उनकी लिस्ट में नाम आएगा या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, वो क्या करें, वो कौन से करियर को चूज करें इन फ्यूचर, वो किस तरह से कौन सी डिग्री को ऑप्ट करें, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं बीएस में, बहुत सारी ऑप्शंस अब उनके सामने हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी और वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं?
2: देखिए ऑप्शन बहुत सारी हैं इंटर के बाद, और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उस तरह से करियर काउंसलिंग नहीं है स्टूडेंट्स की, दे आर कंफ्यूज्ड कि हम कहां पे जाएं। तो उसमें मैं जो सजेस्ट करता हूं अक्सर बच्चों को कि आप हमेशा सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप किस चीज में कंफर्टेबल फील करते हैं। हर वो काम जो आपको करने में मजा आता है तो आप उस काम को जरूर करें। अगर आपको मैथ नहीं पसंद, अगर आपके मैथ पल्ले नहीं पड़ता तो आप मैथमेटिक्स में ना जाएं, आप कंप्यूटर साइंसेज में ना जाएं, ऐसी फील्ड्स में ना जाएं जहां पे मैथ या स्टैट इन्वॉल्व है, बिकॉज आपके शायद आपका जेहन उस तरफ से उस तरह अलाइन नहीं है। अल्लाह हर किसी को ना अपनी खास कैपेसिटी दी है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथ में, कुछ लोग मैथ नहीं कर सकते, कर पाते। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप वहां पे जाएं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपको ड्राइव करता है। और जब आप एक फील्ड में आ गए हैं और उसमें फिर आप परफेक्शन के लेवल तक जाएं, लाइक फिर उसको छोड़े ना, फिर कंसिस्टेंट रहें, तो ये बड़ा ये खुद को समझना, खुद को रीड करना, खुद को पढ़ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरी नजर में। वी डोंट नो कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हमें खुद को स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे तमाम बच्चे जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, दे नीड टू स्टडी देमसेल्व्स, अपने अंदर झांक के देखें, खुद से पूछें कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सोशल साइंसेस में, आर्ट्स में, आपका जेन कहां पे ज्यादा चलता है। तो फिर अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलें, अपने स्किल्स के ऊपर खेलें, तो अपना एक पाथ चूज करें, किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लें, उसके बाद कंसिस्टेंट होकर उसको फिर आप आगे लेके चलें, इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते निकले।
1: और सर क्या उनको वेट करना चाहिए एडमिशन लिस्ट के लिए, जो वेट कर रहे होते हैं कि अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की लिस्ट लग जाएगी, अब हम एडमिशन लें या ना लें? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो यूजुअली बच्चे हमसे कंसल्ट कर रहे होते हैं, और यही कह रहे होते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या उस यूनिवर्सिटी का वेट करूं या मैं यहां प्राइवेट में ले लूं, पता नहीं प्राइवेट में मेरी स्कॉलरशिप ना खत्म हो जाए, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगा।
2: देखिए मैं समझता हूं कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है सिर्फ उसका नाम ना देखें, उसकी प्रोग्रेस देखें, उसका आउटपुट देखें। यहां पे बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां आपको नजर आती हैं, लेकिन अंदर से वो उस तरह का वो माहौल नहीं है, उस तरह के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जो कि आप अज्यूम कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, मेरे ख्याल में आपने जहां भी आपकी जो आइडियल यूनिवर्सिटी है वहां पे जरूर जाएं, वहां पे जाकर वहां का सेटअप जरूर देखें, जाके उनकी फैकल्टी से मिलें, उनका सेटअप देखें और देखें क्या यहां पे आपको अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की लिबर्टी है कि नहीं है, यहाँ का माहौल घुटनदा तो नहीं है, तो किस हद तक आप वहाँ पे खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। हाँ एक प्लस पॉइंट फीस का होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, तो वहाँ पे फीस कम होती है, दैट्स व्हाई लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आप लर्निंग लैंडस्केप की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चों को डिग्री तो मिल जाती है बट उनमें वो लर्निंग नहीं होती जो कि आजकल की नीड के मुताबिक रिक्वायर्ड होती है। तो मैं नहीं कहता कि आप वहाँ पे एडमिशन लाने, वहाँ पे अच्छे टीचर्स होंगे, फैसिलिटीज भी होंगी, लेकिन खुद विजिट करें, सीइंग इज बिलीविंग, वहाँ का विजिट भी करें, बाकी जो भी आपकी नजर में उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ का विजिट करें, फिर आप खुद एक मार्केट एनालिसिस करें।
1: और सर मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगी आपकी बात से कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को जरूर विजिट करें, और बुरी नहीं है, हम नहीं कह रहे किसी भी यूनिवर्सिटी को हाईलाइट करके, लेकिन जिस तरह से हमारी फैकल्टी में स्टूडेंट्स को इक्विप किया जा रहा है, जिस तरह से उन पे मेहनत की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, दैट डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड। मैंने देखा है कि हमारी फैकल्टी जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स पे काम कर रही है, वैसे बाकी किसी सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उस तरह से काम नहीं हो रहा। सर मुझे एक और चीज पूछनी है आपकी बात से करते करते एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि समटाइम्स हमने देखा है कि हर साल ना एक सर्टेन डिग्री की तरफ लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, जैसे एक ईयर में बीबीए का बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई, फिर बीएस आईटी को बहुत कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया, फिर बीएस मीडिया के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, देन अभी मैं देखती हूँ तो बीएस एआई का कोई कोर्सेज है, उसके साथ स्टूडेंट्स करवाना चाह रहे हैं अपने आप को लिंक एंड अफिलियट। तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो हर साल ये ट्रेंड चेंज होता है ग्रेजुएशन के लिए कि हम एक सर्टेन तरह की डिग्री कर लें, क्या इस ट्रेंड के साथ खुद को लेकर एडजस्ट कर लेना चाहिए, या जो आपका करियर जो आप सोचते आए हैं, जो आप प्लान करते रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि आई एम द अचीवेबल पर्सन या आई कैन टोटली अचीव दिस थिंग, उसको लेके साथ चलना चाहिए?
2: ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कभी भी

0: एडवांस फील्ड में, तो लाइक आईटी के किसी फील्ड में, लेकिन वो चीज हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है। हमारा दिमाग चलता है ग्राफिक डिजाइन में, हमारा दिमाग चलता है कैमरे में, हमारा दिमाग चलता है राइटिंग में, हम एक आर्टिस्टिक वे में आना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये फील्ड बेहतर, इसलिए हमें ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो आपने एक बार एडमिशन लेने के बाद असेस की, वो चीज पहले असेस करें। आप लेट्स सपोज अगर आपको किसी ने कहा कि ये फलाना जो बीएस है वो आजकल ट्रेंडिंग में है, इसको आप बीएस की डिग्री ले लें, तो एक बार उसकी आउटलाइन पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर की जरूर गो थ्रू करें और खुद से पूछें कि आप ये तमाम कोर्सेज पढ़ लेंगे, कि आप ये सारे जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं जिनमें कोडिंग भी इन्वॉल्व होगी, जिनमें मैथ भी इन्वॉल्व होगा, जिनमें स्टैट भी इन्वॉल्व होगी, जिनमें आपको टेक्निकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उसमें बहुत सारी मेमोरी आपको अपडेट अपनी करनी पड़ेगी, क्या आप वो कर लेंगे? खुद से पूछें। अगर कर लेंगे देन बहुत अच्छी बात है, जाएं और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें और जाके उस फील्ड के अंदर आप महारत हासिल करें, आप बहुत अच्छा आगे इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन अगर आपको एलर्जिक है, सपोज मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मुझे बहुत मुझे कहा गया कि आप सीए कर लें, आप सीए छोड़ के एसीसीए कर लें, मैनेजमेंट में आप अकाउंट्स वगैरह में आ जाएंगे तो काफी इसका आगे स्कोप है। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यही काम किया, मैंने एक बीकॉम की एक बुक रैंडम उठाई, मैंने उसको थोड़ा सा रीड किया, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया, मैं मीडिया में आ गया। तो इसी तरह से जो कुछ लोग मेडिकल में बहुत अच्छे होते हैं, देखो इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को हर किस्म की जो है ना ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ उसकी कैपेसिटीज दी हैं। बाज लोगों की स्किल्स साइको मोटर स्किल्स होती हैं, वो कुछ करके सीखते हैं। बाज लोग विजुअल थिंकर होते हैं, वो देख के सीखते हैं। बाज लोग जो है ना वो वर्बल थिंकर्स होते हैं। बाज लोगों को मैथ बहुत अच्छा समझ आता है, बाज लोगों को नहीं आता, ये कसूर उनका नहीं है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आप उस तरह उसके लिए बने ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपने एक फील्ड चूज कर ली है तो उसको सोच समझ के चूज करें। ट्रेंड को भूल जाए, ट्रेंड क्या है, देखें हर फील्ड में आपने रास्ते निकालने हैं। हर बंदा, मुझे एक मेरे एक बॉस थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, कहते जब आपने कोई मिसाल देनी होती है ना तो हमेशा उन लोगों की मिसाल दिया करें जो लोग उस फील्ड में कामयाब हैं, कभी नाकाम लोगों की मिसाल ना दें। तो अगर आपने सीए करना कि नहीं करना, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलें जो उस फील्ड में कामयाब है, वो आपको सही मशवरा देगा। नाकाम से मिलना, नाकाम के कहने आपने ये नहीं आना, वो अपनी नाकामियों का पर्दा आप पे डाल देगा, मलबा सॉरी आप पे डाल देगा। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों से मिलें, वहां से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, कामयाब लोगों से मिलें जो फील्ड में कामयाब है, वो आपको सही मशवरा भी देंगे। फिर किसी एक मशवरे पर रिलाई ना करें, मुख्तलिफ एडवाइसेस मुख्तलिफ लोगों से लें, फिर अपने खुद से पूछें कि एम आई एलिजिबल और एम आई कॉम्पिटेंट एनफ टू ऑप्ट दिस फील्ड। यकीन करें दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे आपको वो स्कोप ना हो, स्कोप होता है लेकिन रास्ते आपने खुद बनाने होते हैं।
1: ये सारी बात पोटेंशियल की होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, बहुत मजा आया, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला और मुझे पूरा यकीन है कि सामाइन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ सुनते रहें FM 92.6, मैं हूँ मरियम इरशाद फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट थे डॉक्टर आतिफ अशरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड HOD फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुताबिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है। Ladies and gentlemen.

0: www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: किसी की बस जरा सी

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

मौसीकी के सुर और तान, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।